0: Touched by the strength of yoga, these people could hardly wait for the evening to see and hear Swamiji.
1: कहाँ तितिक्षा की, कहाँ सहन करने की शक्ति है? अरे थे कट ध्यान करियो, थारा ध्यान तो पगों में है तो कि हमारा पग दुखे। हमें तो उस निराकार के अंदर जाना है, चिदाकाश के अंदर यात्रा करनी है, हमें तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है। कहाँ? हमारे स्वयं चिदाकाश के अंदर। और हमारा चिदाकाश कितना बड़ा है? हमारा चिदाकाश इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा, जितना ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है।
0: To the delight of many, Swamiji conducted the morning sadhana. This morning, the subject is meditation.
1: The liberation doesn't come through some postures of the body. The liberation will come through the knowledge and Guru Kripa.
2: Everything what's happening, I'm beyond this. Be the witness of your body. Be the observer of your thoughts. And feel that I am relaxed. I am the bliss. I am the bliss.
0: Every evening, spiritual thirst was quenched by the words of the Guru.
1: O Swayambhu Shiv, वचैतन्य शिव, जिनके द्वारा सूर्य चंद्र तारे ग्रह दृश्य दृश्यमान शक्तियां गुण तत्व आदि की उत्पत्ति हुई, और वही चैतन्य शिव स्वयंभो इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर विद्यमान है।
0: A new morning, a new yoga technique. Today, on schedule, it is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental functions.
2: Try to gaze on the flame carefully. Try to become one with the flame.
0: Swamiji has found the time to visit a school for children with hearing and speaking problems, deaf and mute children. The arrival of a yogi always offers something that can help.
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं, और साथ ही साथ वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्व, तो उसमें कुंभक के द्वारा प्राणायाम, विशेष कुंभक होती है। उस कुंभक से क्या होता है कि कुछ नाड़ियों का यहाँ खुल जाना होगा, सेंटर जो केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है।
0: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work and satsang.
1: और उस हृदय आकाश के अंदर, कमल के अंदर में एक छोटी सी गुफा है, और उस गुफा के वो अंदर वो जो क्लोज, इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है, विधीन उसके अंदर में एक स्पेस जो है गुफा, और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है, वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है।
0: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot.

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swamiji, Matanandji Maharaj sahab to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain jaisa bataya gaya par unka sandesh hamare beech mein hai aapke beech mein hai lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile atma ko shanti mile sadbhav ka vatavaran kayam ho ek lamba jeevan unhone bitaya aur kis prakar se ve समाज को देश को दुनिया को संदेश देते गए ये सौभाग्य है पाली जिले का देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का जहाँ वो पैदा हुए उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आप सबके सामने है।
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं तन से वहाँ हैं गुरुजी हमेशा यही कहते हैं नशा पत्ता छोड़ो जाति पाति का भेदभाव छोड़ो सर्वधर्म का सम्मान करो जिससे कि विश्व शांति बनी रहे प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो बोल श्री दीप नारायण भगवान की धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम।

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हियर इन दिस हॉल एंड ऑल डियर भक्तास राउंड द वर्ल्ड हुज विद अस थ्रू आवर वेबकास्ट। वेलकम। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। इट वॉज द महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि सेरेमोनीज पूजास एंड वी हैव एस्टेब्लिश्ड हियर ब्यूटिफुल न्यू शिव टेम्पल। देयर वॉज अमावस्या। अमावस्या मीन्स द डार्क नाइट, डार्क मून इज ऑपोजिट टू द फुल मून। Moon is very powerful. Moon is a balancing principle for the earth. It's like antenna. So moon is growing and decreasing, increasing full moon to the dark moon to the full moon.

भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की। जय मीन्स ग्लोरी, जय मीन्स विक्टोरी, सो एंड जय मीन्स लॉन्ग लाइफ। सो वी ऑलवेज सेड द ग्लोरी विक्टोरी ऑफ गुरुदेव, विक्टोरी ऑफ द राइट हाउसनेस, द धर्मा, सनातन धर्मा।

0: चरण में सत
1: तीर्थ है वो वेद पुराण में गाते।
0: सिद्धि प्राय भगवान
1: की जय।
0: श्री विश्व गुंडा श्वा परम स्वामी नाशन गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।

की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। Anybody wants to sing?

परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। अलकपुरी जी महादेव की, देवाजी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर

is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education, is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagada keval bhasa ka hai aur kuch bhi nahi. Aap Ramayan Gita padhoge to musliman shayad nahi samjhenge, swikar nahi karenge. Aur agar wo Quran Urdu padhenge to aap swikar nahi karoge, kyun aap nahi samajh rahe ho. बात वो ही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है कहीं, मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है मारी दादी है, एक है मारे माँ है, दूसरे कहता है मारी बेटी है, तीसरे कहता है मारी बहन है, और दूसरा कहता है मारी बुआ है, दूसरा कहता है मारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो, है काका काकी बाजी बाजी हो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, मारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं, एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. Similarly, God is one, which God has no name. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाडन गुरुकुल में भर्ती करिया है. नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है. उन्होंने ठा तो है को नहीं. बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे. नौकरी पड़ी खाडा रे माए. मनुष्य बनाओ बच्चे को. आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं लागे. इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है. तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा. संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है. संस्कार. आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो. नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे. नहीं नहीं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी.

हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परी जई के बाबी कुमारी, कौन कह रही है, रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई, कौन केवे कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी के रही है, तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो, सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग एंड देन आफ्टर दे शुड लर्न इंग्लिश, दे डोंट नो इंग्लिश एंड दे फॉरगॉट द हिंदी। आई आस्क समवन एड्रेस, आई हैव वेरी विश द डायरेक्शन इज गोइंग देयर, वो वेर इज दैट प्लेस, से स्टेट, स्टेट इज नॉट ए पाथ डायरेक्शन स्ट्रेट, बट वो स्ट्रेट तो आता नहीं है। और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो क्या कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी, सही बात है कि नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज ए गुरु पूर्णिमा एंड देन इज ए वर्शिप्ड ऑफ दैट डिवाइन हु गेव यू द नॉलेज, देन इज ए बर्थडे ऑफ भगवान वेद व्यास एंड एवरी डिसाइपल एडोर्स remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called a living culture. Sanatan Dharma is a living Dharma. Sanatan Dharma
is a living dharma. What does it mean? What means the living dharma? One mother gives a birth to a child. It is the dharma of the mother to give a birth to the child. It's her dharma, wo sanatan dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु है. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर, चाइल्ड, हस्बैंड, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही. इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा. और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यहीं पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गणेश जा हुई जा. कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. माँ कोई नाग देवता बैठा वे तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है. जब को ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर. ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे, दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा. अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर 1 आवर

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: देवपुरीशा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
2: जय।

श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धरनाशकाय हरि ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुण्डरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि यस्मृत पुण्डरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। ज्यादा हो गए कुछ समझिए तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरि ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि ओम श्रीनारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम् हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम पावन यज्ञ हेतु च पय स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम इति पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पय स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पावन यज्ञ हेतुश्च पय स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदा शिवाय नमो नमः। साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। इदं मधु स्नानं करिष्यामि। शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्ल शशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओदो सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। हरि ओम। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाति जलं सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पानी और ओके। अब तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदम हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदा शिवाय नमः। साम

0: पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय धियाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: चावल और चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्यमे दक्षिणां समर्पयामि साम मसला शिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते नलक्ये वस्त्रं समर्पयामि श्रीनारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतुर को स्मरण करके। हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम चढ़ाइए। त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को पचाए। Can you pass that thali to Swamiji?
0: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phalacharu bhakshanam umasutam soka vinasakarakam namami vigneshwara padapangajam siddhi buddhi saitaya sri gamganadhipataye namaha श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः।
1: सिंदूर भी लगा दीजिए।
0: सिंदूरम शोभदम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभदम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताक्ष कुंकुमाक्ता शुभ्राखुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देतुभ्यं वासदि प्रतिगृहताम।
1: थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंद लगाई थी बूंद।
0: हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः।
1: समवन कैन प्ले द बेल।
0: ओम सांब सदा शिवाय नमः
1: ना अगरबत्ती

0: शंकर भगवान की जय। अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर। हरि ओम। कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: They go back out. Thank you.

0: More water. Clean it.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए ओम पश्चिमाय नमः ओम उत्तराय नमः उत्तर दिशै नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम आग्नेय नमः ओम वायव्ये नमः ओम नैऋत्ये नमः सानाय नमः ओम भूतलाय नमः नीचे ओम आकाशाय नमः आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में नाउ फ्लावर वी नीड टू हैव फ्लावर
0: ब्रिंग मी 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन
1: या दैट इज ऑलरेडी हरि ओम ओम सूर्याय नमः ओम सोम सेता वाइट ओम चंद्राय नमः ओम भौमाय लाल रेड ओम भौमाय नमः भौमरेण ऑलराइट भौमाय नमः नाउ ग्रीन बुम बुदाय नमः ओम बुम बुदाय नमः ओ येलो ओ ब्रिम्रेस्पतये नमः नाउ व्हाइट डायमंड कलर ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः नाउ ब्लैक सनी कलर ओम शमशनेश्वराय नमः शमशनेश्वराय नमः नाउ ब्लू ओ ये या ओम राम राहवे नमः ब्राउन Oh, maybe that one, like pinky style. Yeah, you got it? Okay, yeah.
0: Where is the vokai? Where is the...
1: Basma?
0: Basma.
1: There is a small katori, where is that Basma?
0: Yellow band.
1: Bas. Om kem ke dave namaha. Bas, bas. Ab, agni ko... प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राणस मघ्रार दग्नि अजायत ओम अग्ने सानिल्य गोत्र ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखार अग्नि अजायत बोलिए अग्नि देवता की जय नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री
0: All these three ones?
1: No. Different, separate, yeah, okay. Oh.

0: ओम धन्वंतरवे स्वाहा। बस नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी? ओ हाँ, ये घी के लिए। श्योर। ओम प्रजापते स्वाहा। पुट इन योर चेस्ट एंड व्हेन ही सेज स्वाहा। ओके, जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ, जो पीछे आए।
1: रतन देवी और सूरज देवी, those who just came now, put them till the balls from this here. And where is this thali?

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम् स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कस्सन सशत्त शोक सुभद्रिकाम काम्बिलवासिनीम् स्वाहा, एहे ई ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम्ब सदा शिवाय

0: சாரவேதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ரிக்வேதாய நமஹா ஸ்வாஹா. சாமவேதாய நமஹா ஸ்வாஹா. யஜுர்வேதாய நமஹா ஸ்வாஹா. அத்தர்வவேதாய நமஹா ஸ்வாஹா. அட்டார புராணாய நமஹா ஸ்வாஹா. சகல உபநிஷதாய நமஹா ஸ்வாஹா. பத்ரிநாதாய நமஹா ஸ்வாஹா. கேதாரநாதாய நமஹா ஸ்வாஹா. தாக்கூர்புரே நமஹா ஸ்வாஹா. சோமநாதாய நமஹா ஸ்வாஹா. அமரநாதாய நமஹா ஸ்வாஹா. நவ் வி கோயிங் தௌசண்ட்ஸ் ஓம் ஸ்திராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓ ஸ்தானவே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரபவே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பீமாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பரதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரபவாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரபராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பரதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வாத்மனே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வவிக்ஷதாய நமஹா. ஓம் சர்வஸ்மை நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வகராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பவாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஜடினே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்மிணே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சிகண்டினே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வாங்கனாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வபாவனாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஹராய நமஹா. ஓம் ஹரிணாக்ஷாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வபூதஹராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரபவே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரவித்யாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் நிவித்தாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் நியதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சாஸ்வதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் த்ருவாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்மசானவாசினே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பகவதே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கஜராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கோச்சராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் அர்தனாய நமஹா ஸ்வாஹா. அபிவாத்யாய நமஹா ஸ்வாஹா. மகாகர்மணே நமஹா ஸ்வாஹா. தபஸ்வினே நமஹா ஸ்வாஹா. பூதபாவனாய நமஹா ஸ்வாஹா. உன்மத்த வேஷ பிரச்சன்னாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வலோக பிரஜாபதயே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் மகாரூபாய நமஹா ஸ்வாஹா. மகாகாயாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ரிஷரூபாய நமஹா ஸ்வாஹா. மகாயசே நமஹா ஸ்வாஹா. மகாத்மனே நமஹா ஸ்வாஹா. சர்வபூதாத்மனே நமஹா ஸ்வாஹா. விஸ்வரூபாய நமஹா ஸ்வாஹா. மகாஹணவே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் லோகபாலாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் அந்தர்ஹித்மனே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரசாதாய. ஓம் ஹிகர்வே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பவித்ராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் மஹதே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் நியமாய நமஹா ஸ்வாஹா. நியமாஸ்ரிதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சர்வகர்மணே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஸ்வயம்புபூதாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஆதயே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் ஆதிகராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் நிதயே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சஹஸ்ரதாய நமஹா ஸ்வாஹா. விசாலாக்ஷாய நமஹா. ஓம் சோமாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் நட்சத்திர சாதகாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சந்திராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சூர்யாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் சனயே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கேதவே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கிரஹாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கிரஹபதயே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் வராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் அத்ரயே நமஹா ஸ்வாஹா. அத்ர நஸ்மகர்த்தே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் மிருகபாணபாணியாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் அகநாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் மகாதபசே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் கோரதபசே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் அதீனாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் தீனசாதகாய நமஹா ஸ்வாஹா. சம்மத சரகாராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் மந்த்ராய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பிரமாணாய நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் பரமாத்ம தபசே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் யோகினே நமஹா ஸ்வாஹா. ஓம் யஜ்யாய நமஹா ஸ்வாஹா. மகாபீஜாய நமஹா ஸ்வாஹா. महारेतसे नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। दिग्भाषसे नमः स्वाहा। ओम कामाय नमः स्वाहा। मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा। परमाय मंत्राय नमः स्वाहा। सर्वभावकराय नमः स्वाहा। ओम हराय नमः स्वाहा। ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा। ओम धनुन्ये नमः स्वाहा। ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा। ओम कपालवते नमः स्वाहा। ओम असनये नमः स्वाहा। शतघ्निने नमः स्वाहा। ओम खंगिने नमः स्वाहा। पट्टिसिने नमः स्वाहा। आयुधिने नमः स्वाहा। महते नमः स्वाहा। सुवस्ताय नमः स्वाहा। सुरूपाय नमः स्वाहा। ओम तेजसे नमः। ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा। उष्णीषिणे नमः स्वाहा। शुभक्राय नमः स्वाहा। उद्ग्राय नमः स्वाहा। ओम विनताय नमः स्वाहा। ओम दीर्घाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा। सुतीर्थाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम मुंडाय नमः। ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा। ओम गंधधारिण्ये नमः स्वाहा। ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा। ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा। ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा। ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा। नभस्थलाय नमः स्वाहा। त्रिजटिने नमः स्वाहा। चिरवाससे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम सेनापतये नमः। ओम विभवे नमः। ओम अहस्वराय नमः। ओम नक्तस्वराय नमः स्वाहा। ओम तिन्मगये नमः स्वाहा। ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा। शुभचर्षाय नमः स्वाहा। ओम गजग्ने नमः स्वाहा। ओम पाणिने नमः स्वाहा। ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा। ओम गुणकाराय नमः स्वाहा। सिंहादूलरूपाय नमः स्वाहा। आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः स्वाहा। कालयोगिने नमः स्वाहा। महानादाय नमः स्वाहा। ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा। ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा। ओम निशाचराय नमः स्वाहा। ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा। ओम भूतचारिणे नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम बहुभूताय नमः स्वाहा। ओम बहुधराय नमः स्वाहा। ओम सोनार्वे नमः स्वाहा। ओम अमिताय नमः स्वाहा। ओम गतये नमः स्वाहा। ओम नित्यप्रियाय नमः स्वाहा। नित्यनर्तनाय नमः स्वाहा। नर्तकाय नमः स्वाहा। सर्वलालसाय नमः स्वाहा। ओम घोराय नमः स्वाहा। ओम महातपसे नमः स्वाहा। ओम पाशाय नमः स्वाहा। ओम नित्याय नमः स्वाहा। ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा। ओम नवसे नमः स्वाहा। ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम व्यवसाय नमः स्वाहा। अंतरिद्याय नमः स्वाहा। ओम अतीन्द्राय नमः स्वाहा। अघर्णनाय नमः स्वाहा। ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा। यगने नमः स्वाहा। कामनाशकाय नमः स्वाहा। दक्षगपाहाय नमः स्वाहा। ओम सुसहाय नमः स्वाहा। मध्यमाय नमः स्वाहा। तेजपहारिणे नमः स्वाहा। बलग्ने नमः स्वाहा। मुदिताय नमः स्वाहा। अर्थानाय नमः स्वाहा। अजिताय नमः स्वाहा। अवराय नमः स्वाहा। गंभीरघोषय नमः स्वाहा। गंभीराय नमः स्वाहा। गंभीरबलहानाय नमः स्वाहा। न्यग्नोरूपधराय नमः स्वाहा। न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा। ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा। ओम विभवे नमः स्वाहा। सुतीक्ष्णदर्शनाय नमः स्वाहा। महाकायाय नमः स्वाहा। महाननयाय नमः स्वाहा। विश्वक्षणाय नमः स्वाहा। ओम हरये नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा। तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा। ओम हयर्षाय नमः स्वाहा। सहायाय नमः स्वाहा। कर्मकालविदाय नमः स्वाहा। विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। ओम समुद्राय नमः। ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा उतासनसाहासाय नमः स्वाहा उतासनसहायाय नमः स्वाहा ओ प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा उतासनाय नमः स्वाहा उग्रतेजसे नमः स्वाहा महातेजसे नमः स्वाहा जन्यायः नमः स्वाहा बीजकालविदे नमः स्वाहा ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धये नमः स्वाहा सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा ओम शिखिने नमः स्वाहा ओम मुनिने नमः स्वाहा जटिने नमः स्वाहा जलिने नमः स्वाहा ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा मूर्धजाय नमः स्वाहा ओम बलिने नमः स्वाहा बैनविने नमः स्वाहा ओम प्रणविने नमः स्वाहा ओम तालिने नमः स्वाहा ओम खलिने नमः ओम कलंककटाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र विग्रहहस्ताय नमः स्वाहा गुणबुद्धये नमः स्वाहा ललाय नमः स्वाहा ओम अगमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम विश्ववाहवे नमः स्वाहा ओम विभागाय नमः स्वाहा ओम सर्वगाय नमः स्वाहा अमुखाय नमः स्वाहा ओम विमोचनाय नमः स्वाहा सुरासुराय नमः स्वाहा हिरण्यकवचजताय नमः स्वाहा मेधजताय नमः स्वाहा बलचारिणे नमः स्वाहा महीचारिणे नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रुविनाशाय नमः स्वाहा सांगप्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वसारिणी नमः स्वाहा दुर्वासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओनिग्राय नमः स्वाहा ओकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्परिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकालप्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवेशाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्ररूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्षिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनोवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा वेच्छवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा वज्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः swaha. Now in 360.
1: Only?
0: Yeah.
1: 360
0: ho gaya. Ho gaya. Just we finish, yeah.
1: 700 we have still.
0: Yeah, 700. So this is a good meditation. Keep continuing. Meditation in Kali Yuga. Om Viskambine Namaha. Swaha Samustamanaya Namaha. Swaha Vrittavitakaraya Namaha. Swaha Talaya Namaha. Swaha Madave Namaha. Swaha Madhukulojanaya Namaha. Swaha Bachaspataya Namaha. Swaha Bajasenaya Namaha. Swaha Nityamasira Pujitaya Namaha. Swaha Brahmacharine Namaha. Swaha Lokacharine Namaha. Swaha Sarvacharine Namaha. Swaha Vicharavide Namaha. Swaha Om Ishanaya Namaha. Swaha Om Ishwaraya Namaha. Swaha Om Kalaya Namaha. Swaha Nishacharine Namaha. Swaha Pinakavritte Namaha. Swaha Om Nimittasthana Namaha. Swaha Om Nimittaya Namaha. Swaha Om Nandaye Namaha. Swaha Om Nandikaraya Namaha. Swaha Om Haraye Namaha. Swaha Om Nandishwaraya Namaha. Swaha Om Nandine Namaha. Swaha Om Nandaya Namaha. Swaha Nandigavardhanaya Namaha. Swaha Om Bhagaharine Namaha. Swaha Niyasre Namaha. Swaha Om Kalaya Namaha. Swaha Om Brahmaya Namaha. Swaha Pitamahaya Namaha. Swaha Chaturmukhaya Namaha. Swaha Om Mahalingaya Namaha. Swaha Om Charulingaya Namaha. Swaha Om Lingadhyakshaya Namaha. Swaha Om Suradhyakshaya Namaha. Swaha Om Yogadhyakshaya Namaha. Swaha Yugavahaya Namaha. Swaha Vijadhyakshaya Namaha. Swaha Vijakarte Namaha. Swaha Adhatma Nagatanaya Namaha. Swaha Balaya Namaha. Swaha Itihasaya Namaha. Swaha Sakalpaya Namaha. Swaha Gautamaya Namaha. Swaha Nisakaraya Namaha. Swaha Dhammaya Namaha. Swaha Om Amandamaya Namaha. Swaha Om Vedambhyaya Namaha. Swaha Om Vaishyaya Namaha. Swaha Vasakaraya Namaha. Swaha Kalaya Namaha. Swaha Om Lokarte Namaha. Swaha Om Pasupataye Namaha. Swaha Om Mahakarte Namaha. Swaha Om Anusadaya Namaha. Swaha Om Aksharaya Namaha. Swaha Om Paramaya Namaha. Swaha Om Paramaya Brahmane Namaha. Swaha Om Balavate Namaha. Swaha Om Sukraya Namaha. Swaha Om Nityaye Namaha. Om Anityaye Namaha. Om Suddhatmane Namaha. Swaha Om Suddhaye Namaha. Swaha Om Manyaye Namaha. Swaha Om Gatagataye Namaha. Swaha Om Bahuprasadaye Namaha. Swaha Om Suprasnaye Namaha. Swaha Om Darpanaye Namaha. Swaha Om Amitrajite Namaha. Swaha Om Vedakaraye Namaha. Swaha Om Manchakaraye Namaha. Swaha Om Vidishaye Namaha. Swaha Om Samardardanaye Namaha. Swaha Om Mahavinishaye Namaha. Swaha Om Mahagoraye Namaha. Swaha Om Vasine Namaha. Swaha Om Karaye Namaha. Swaha Om Nijalaye Namaha. Swaha Mahajalaye Namaha. Swaha Om Adi Vidumbaye Namaha. Swaha Om Hutaye Namaha. Swaha Om Vishaye Namaha. Swaha Vishaye Namaha. Swaha Sangraye Namaha. Om Nitya Varshine Swaha Namaha. O Dhumraketaye Namaha. Swaha Om Nilaparaye Namaha. Swaha Om Angulodyaye Namaha. Swaha Om Shobhanaye Namaha. Swaha Om Nivargaye Namaha. Swaha Swastidataye Namaha. Ye to hai. Swaha Namaha. Om Swati Bhavaye Namaha. O Bhagine Namaha. Om Bhagakaraye Namaha. Swaha Om Lagave Namaha. Swaha Usanaye Namaha. Swaha Mahankaraye Namaha. Swaha Mahagarapraye Namaha. Swaha Krishnavarchaye Namaha. Swaha Subhanaye Namaha. Swaha Om Sarva Dehinam Indriyaye Namaha. Swaha Om Mahapadakaye Namaha. Swaha Mahastaye Namaha. Swaha Mahakayaye Namaha. Swaha Mahayasase Namaha. Swaha Mahagrabhumde Namaha. Swaha Mahamatraye Namaha. Swaha Mahanetraye Namaha. Swaha Nishalaye Namaha. Swaha Mahakantaye Namaha. Swaha Mahakarnaye Namaha. Swaha Mahishtaye Namaha. Swaha Hanave Namaha. Swaha Mahahanave Namaha. Swaha Manasaye Namaha. Swaha Mahangampave Namaha. Swaha Mahagrivisaye Namaha. Smarasana Vaje Namaha. Mahabhakshaye Namaha. Om Maheshwaraye Namaha. Swaha Marurasakaye Namaha. Swaha Antaratmane Namaha. Swaha Mrigalaye Namaha. Swaha Om Lambanaye Namaha. Swaha Om Lambisthwasaye Namaha. Swaha Mahamayaye Namaha. Swaha Om Swaha Mayopadaniye Namaha. Swaha Payonidhaye Namaha. Swaha Mahadantaye Namaha. Swaha Mahadrashtaye Namaha. Swaha Mahajivaye Namaha. Swaha Om Mahamukhaye Namaha. Swaha Mahanakhaye Namaha. Swaha Mahasuraye Namaha. Swaha Mahakosaye Namaha. Swaha Mahajataye Namaha. Swaha Prasannaye Namaha. Swaha Om Prasadaye Namaha. Swaha Om Prapatyaye Namaha. Swaha Girisadanaye Namaha. Swaha Isnaye Namaha. Swaha Om Ahasraye Namaha. Swaha Om Ajitaye Namaha. Swaha Mahamunaye Namaha. Swaha Vrichakaraye Namaha. Swaha Vrichakitave Namaha. Swaha Analaye Namaha. Swaha Bahubayanaye Namaha. स्वाहा गंडलीने नमः।

0: नमः, स्वाहा ओम प्रियाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा कनकाय नमः, स्वाहा कंचन छवै नमः, स्वाहा ओम नाभय नमः, स्वाहा नंदीकाराय नमः, स्वाहा ओम भावाय नमः, स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः, स्वाहा ओम स्थिराय नमः, स्वाहा द्वादशाय नमः, स्वाहा ओम त्रासनाय नमः, स्वाहा ओम आद्याय नमः, स्वाहा ओम यज्ञाय नमः, स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः, स्वाहा नक्तम नमः, ओम कलये नमः, स्वाहा ओम कालाय नमः, स्वाहा ओम मकराय नमः, स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः, स्वाहा ओम सगणाय नमः, स्वाहा ओम गुणकराय नमः, स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः, स्वाहा ओम भस्माय नमः, स्वाहा भस्मधाराय नमः, स्वाहा भस्म गोतने नमः, स्वाहा भस्म सयाय नमः, स्वाहा भस्म गोतने नमः, स्वाहा भस्म भूताय नमः, स्वाहा ओम तरवे नमः, स्वाहा ओम गणाय नमः, स्वाहा लोकपालाय नमः, स्वाहा ओम अलोकाय नमः, स्वाहा ओम आत्मने नमः, स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः, स्वाहा ओम शुक्लाय नमः, स्वाहा ओम त्रिशुकाय नमः, स्वाहा संपन्नाय नमः, स्वाहा अशुचाय नमः, स्वाहा भूत निविशिताय नमः, स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः, स्वाहा क्रियावस्थाय नमः, स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः, ओम ओम वराय नमः, स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः, स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः, स्वाहा इस हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञेयाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनल्लघाय नमः स्वाहा बन्धनाय नमः स्वाहा बन्धकर्ते नमः स्वाहा सुबन्धबीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुरागिरिणे नमः स्वाहा अहिर्भूद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम ऋषभे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओ तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओ संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवाहिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशान्ताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्यसञ्चने नमः स्वाहा ओम ए नमः स्वाहा।

0: कुरु कर्त्रे नमः स्वाहा, ओम कुरु वासिने नमः स्वाहा, कुरु भूताय नमः स्वाहा, ओम गुण दोषाय नमः स्वाहा, ओम सर्वासाय नमः स्वाहा, धर्मचारिणी नमः स्वाहा, सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा, ओम देवा देवाय नमः, सुमुख सक्ताय नमः स्वाहा, ओम सते नमः स्वाहा, ओम असते नमः स्वाहा, ओम सर्वरत्न वेद नमः स्वाहा, ओम कैलासगिरी वासिने नमः स्वाहा, हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा, हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा, ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा, ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा, ओम भौविद्याय नमः स्वाहा, ओम बरुप्रदाय नमः स्वाहा, ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा, ओम वरदकिने नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, ओम वकिलाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम अलोलाय नमः स्वाहा, ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम महाजत्रे नमः स्वाहा, ओम अलोचाय नमः स्वाहा, महासौदाय नमः स्वाहा, सिद्धकारिणी नमः स्वाहा, ओम छदाय नमः स्वाहा, ओम चंदनाय नमः स्वाहा, ओम वृक्षाय नमः स्वाहा, वरदकिने नमः स्वाहा, वाणिज्याय नमः स्वाहा, वकिलाय नमः स्वाहा, बहुप्रदाय नमः स्वाहा, बहुविद्याय नमः स्वाहा, सिद्धार्थकारिणी नमः स्वाहा, सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा, सिंहनादनाय नमः स्वाहा, सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा, सिंहगाय नमः स्वाहा, सिंहवाहनाय नमः स्वाहा, प्रभात्मने नमः स्वाहा, जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा, लोकहिताय नमः स्वाहा, अमतरवे नमः स्वाहा, सारंजाय नमः स्वाहा, नवचक्रांगाय नमः स्वाहा, केतुमालिनी नमः स्वाहा, सवानाय नमः स्वाहा, भूतालयाय नमः स्वाहा, भूतपतये नमः स्वाहा, अहोरात्राय नमः स्वाहा, अग्निदिताय नमः स्वाहा, सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः स्वाहा, अनिलाय नमः स्वाहा, विभवे नमः स्वाहा, भवनाय नमः स्वाहा, अमोघाय नमः स्वाहा, संगताय नमः स्वाहा, अश्वाय नमः स्वाहा, भोजनाय नमः स्वाहा, प्राणधाराय नमः स्वाहा, घृतमिदे नमः स्वाहा, अमिताय नमः स्वाहा, दक्षाय नमः स्वाहा, सत्कृताय नमः स्वाहा, युगधापिताय नमः स्वाहा, गोपालाय नमः स्वाहा, गोपतये नमः, ओम ग्रामाय नमः स्वाहा, गोमवर्चनाय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा, प्रवेशिनाय नमः स्वाहा, गुहालपालाय नमः स्वाहा, प्रकिष्ठारे नमः स्वाहा, महर्षाय नमः स्वाहा, जितकामाय नमः स्वाहा, जितेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम गंधधराय नमः स्वाहा, उषताय नमः स्वाहा, 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्य सक्ताय नमः स्वाहा, ओम रतये नमः स्वाहा, ओम नराय नमः स्वाहा, महागीताय नमः स्वाहा, मायानित्याय नमः स्वाहा, अप्सरो गण वेत्य शिवाय नमः स्वाहा, महाकेतवे नमः स्वाहा, महाधातवे नमः स्वाहा, नेनक्यसुनचार्य नमः स्वाहा, नेकसानुचराय नमः स्वाहा, ओम चलाय नमः स्वाहा, ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा, आदेशयाय नमः स्वाहा, सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा, तोरणाय नमः स्वाहा, ओम तारणाय नमः स्वाहा, ओम बाताय नमः स्वाहा, परिधने नमः स्वाहा, परिखेचराय नमः स्वाहा, संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा, संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा, ओम वृद्धाय नमः स्वाहा, अतिवृद्धाय नमः स्वाहा, ओम अतिवृद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा, ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा, देवासुरपतये नमः स्वाहा, ओम पतये नमः स्वाहा, ओम युक्ताय नमः स्वाहा, ओम युक्तभावे नमः स्वाहा, देवी सुपर्णे नमः स्वाहा, असडाय नमः स्वाहा, ओम सुपसाय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम हरिणाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः स्वाहा, आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा, ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा, महापथाय नमः स्वाहा, ओम शिरोमणि नमः स्वाहा, सर्वलक्षणसिद्धाय नमः स्वाहा, अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा, ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा, महाबलाय नमः स्वाहा, सामग्नाय नमः स्वाहा, ओ अस्मायानाय नमः स्वाहा, तीर्थदेवाय नमः स्वाहा, महारथाय नमः स्वाहा, निर्विजयाय नमः स्वाहा, ओम जीवनाय नमः स्वाहा, ओम मंत्राय नमः स्वाहा, ओम मंचाय नमः स्वाहा, ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा, बहुकर्णनाय नमः स्वाहा, ओम रत्नभूताय नमः, रत्नंगाय नमः स्वाहा, महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा, महार्णबणि पानविदे नमः स्वाहा, ओम मूलाय नमः स्वाहा, ओम विशलाय नमः स्वाहा।

0: ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्या व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरुहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम युगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा ओम महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम असलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिने हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओम शंकाय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुलभावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमूह नाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकृणवणाय नमः स्वाहा अरिहच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेवमापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधारणे नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा शारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्ये नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओ वणशिव्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्ग द्वाराय नमः स्वाहा प्रजा द्वाराय नमः स्वाहा मोक्ष द्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गत्ये नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राज राजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अविराय नमः स्वाहा अविरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा विरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पर्याये गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव शिव जी के 11 1008
1: names
0: त तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं। बचा है बचा, वेट वेट है, है। तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर। ओके ओम।

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावती देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। ये यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्णः स्वाहा, सर्व वै पूर्णः स्वाहा, सर्व वै पूर्णः स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसोः। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम, दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देहि, मन्योमसि मन्युमहि देहि, सहोसि सहोमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गो शांति, हस्ते शांति रापा शांति रो सधाया।

0: शांतिः शांतिः शांतिः। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिओम अकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चन्दनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरि ओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक ओके। दे शुड डिप देयर
0: सेल्फ वी पुट लिटिल घी।

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशि स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

तत्सवित तेन्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवित वरे

ओम श्री प्राण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म

0: अलग पुरी जी महादेव की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं पदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम।

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की